आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

0: और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं। अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें खुदा का रास्ता भुला देंगे। ये महज ख्याल के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं।
1: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ।
0: तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रस्ते से भटके हुए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रस्ते पर चल रहे हैं।
1: فَكُلُوا

और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये चारपाई और खेती मना है, उसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए। और बाज चारपाई ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है, और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर ज़िबाह करते वक्त खुदा का नाम नहीं लेते। सब खुदा पर झूठ है, वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा।

0: और चार पायों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस खुदा का दिया हुआ रिज्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है।
1: ثمانية أزواج من الضأن اثنين

कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि खुदा ने ये चीजें हराम की हैं। फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं।

0: और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया लेकिन इब्लीस कि वो सजदा करने में शामिल न हुआ।
1: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين।
0: खुदा ने फरमाया जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से बाज रखा, उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मट्टी से बनाया है।
1: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر।

0: और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मेह से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हांक देते हैं, फिर बादल से मेह बरसाते हैं, फिर मेह से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत पकड़ो।
1: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون।
0: जो जमीन पाकीजा है उसमें से सब्जा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस ही निकलता है, और जो खराब है उसमें जो कुछ निकलता है नाकिस होता है। इसी तरह हम आयतों को शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते हैं।
1: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم।
0: हम ने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ए मेरी बिरादरी के लोगों, खुदा की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है।
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين।
0: तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें सरीह गुमराही में मुब्तला देखते हैं।
1: قال

हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी खुदा ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ।

तो उनसे इसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और इसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं।

0: और हमने उन पर पत्थरों का मेह बरसाया, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ।
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

आया कस्वा अड़ी नहीं और ना उसकी ये आदत है, बल्कि उसे उस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये लोग किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुरमतों की ताजीम कर रहे हों, लेकिन मैं उसे जरूर तस्लीम करूंगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी को डांटा तो वो उछल कर खड़ी हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में थोड़ी सी तब्दीली की और अक्साए हदीबिया में एक चश्मा पर नजूल फरमाया जिसमें थोड़ा सा पानी था और उसे लोग जरा जरा सा ले रहे थे। चुनाचे चंद ही लम्हों में सारा पानी खत्म हो गया। अब लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरकश से एक तीर निकाला और हुक्म दिया कि चश्मे में डाल दें। लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद वल्लाह उस चश्मे से मुसलसल पानी उबलता रहा, यहाँ तक के तमाम लोग आसूदा होकर वापस हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो चुके तो बुदील बिन वरका खिजाई अपने कबीली खिजा के चंद अफराद की मैयत में हाजिर हुआ। तहामा के बाशिंदों में यही कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैरख्वाह था। बुदील ने कहा, मैं काब बिन लोई को देख कर आ रहा हूँ, वो हुदैबिया के फरमा पानी के पास बैठे पड़ाव डाले हुए हैं, उनके हमरा औरतें और बच्चे भी हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से रोकने का तहिया किए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, कुरैश को लड़ाइयों ने थका दिया है और सख्त जरर पहुंचाया, इसलिए अगर वो चाहें तो उनमें से एक मुद्दत तय कर लें, यूं वो और मेरे लोगों के दरमियान से हट जाएंगे, फिर मेरे गलबे की सूरत में जिस चीज में लोग दाखिल होंगे उसमें वो भी दाखिल हो सकते हैं, वरना मुद्दत के अख्तताम तक वो ताज़ा दम तो हो ही चुके होंगे, और अगर उन्हें लड़ाई के सिवा कुछ मंजूर नहीं तो जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अपने दीन के मामले में उनसे एक वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी गर्दन जुदा ना हो जाए या जब तक अल्लाह अपना अमर नाफिज ना कर दे। हुदैल ने कहा, आप जो कह रहे हैं मैं उसे कुरैश तक पहुँचा दूंगा। उसके बाद वो कुरैश के पास पहुँचा और बोला, मैं उन साहब के पास से होकर आ रहा हूँ, मैंने उनसे एक बात सुनी है, अगर चाहो तो पेश कर दूं। उस पर बेवकूफों ने कहा, हमें कोई जरूरत नहीं कि तुम हमसे उनकी कोई बात बयान करो। लेकिन जो लोग सूझबूझ रखते थे उन्होंने कहा, लाओ सुनाओ, तुमने क्या सुना है? बुदील ने कहा, मैंने उन्हें ये बात कहते सुना है। उस पर कुरैश ने मकरस बिन खवस को भेजा। उसे देख कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बदहद आदमी है। चुनाचे जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर गुफ्तगू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वही बात की जो बुदील और उसके रुफका से कही थी। उसने वापस जाकर कुरैश को पूरी बात से बाखबर किया। उसके बाद जलीस बिन अलकमा नामी बनू कुनाना के एक आदमी ने कहा, मुझे उनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। जब वो नमूदार हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, ये फलां शख्स है, ये ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो हदी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। सहाबा ने जानवरों को खड़ा कर दिया और खुद भी लब्बैक पुकारते हुए उसका इस्तकबाल किया। उस शख्स ने ये कैफियत देखी तो कहा, सुभान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज मुनासिब नहीं, और वहीं से अपने साथियों को लेकर वापस चला गया और बोला, मैंने हदी के जानवर देखे हैं जिनके गलों में कलादे हैं और जिनके कोहान चीरे हुए हैं, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि उन्हें बैतुल्लाह से रोका जाए। इस पर कुरैश और उस शख्स में कुछ ऐसी बातें हुई कि वो ताओ में आ गया। इस मौका पर उरवा बिन मसूद ने मदाखलत की और बोला, उस शख्स ने तुम्हारे सामने एक अच्छी तजवीज पेश की है, लिहाजा उसे कबूल कर लो और मुझे उसके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। चुनाचे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और गुफ्तगू शुरू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी वही बात की जो बुदेल से कही थी। इस पर उरवा ने कहा, ऐ मुहम्मद, ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या आपने आप से पहले किसी अरब के मुतल्लिक सुना है कि उसने अपनी कौम का सफाया कर दिया हो? और अगर दूसरी सूरत हाल पेश आई तो खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरे और ओबाश लोगों को देख रहा हूँ जो इसी लायक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग जाएं। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गुस्से में आकर कहा, जा लात की शर्मगाह को चूस, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागेंगे? और उरवा ने कहा, ये कौन है? लोगों ने कहा, अबू बकर है। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुखातिब करके कहा, देखो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है,
अगर ऐसी बात ना होती कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया था और मैंने उसका बदला

नहीं दिया तो मैं यकीनन तुम्हारी इस बात का जवाब देता। उसके बाद उर्वा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा। वो जब गुफ्तगू करता तो आपकी दाढ़ी पकड़ लेता। मुगीरा बिन शोबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास ही खड़े थे, हाथ में तलवार थी और सर पर खुद। और वह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पर हाथ बढ़ाता तो वह तलवार का दस्ता इसके हाथ पर मारते और कहते, अपना हाथ नबी की दाढ़ी से परे रख। आखिर उर्वा ने अपना सर उठाया और बोला, ये कौन है? लोगों ने कहा, मुगीरा बिन शबा है। इस पर उसने कहा, ओ बदहद, क्या मैं तेरी बदहदी के सिलसिले में दौड़ धूप नहीं कर रहा हूँ? वाकया ये पेश आया था कि जाहिलियत में हजरत मुगीरा कुछ लोगों के साथ थे, फिर उन्हें कत्ल करके उनका माल ले भागे थे और आकर मुसलमान हो गए थे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस्लाम तो कबूल कर लेता हूँ लेकिन माल से मेरा कोई वास्ता नहीं। इस मामले में उर्वा की दौड़ धूप की वजह ये थी, हजरत मुगीरा के भतीजे थे। सामई, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे में आप सुनेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वक्फे के बाद इस सिलसिले को दोबारा से चलाएंगे।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

चेहरे पे फिक्र है वाज़े, तू चेहरे को पढ़ना तो सीख। तू मुझको रास्ते दे, मैं तुझको बदले में फासले दूं। तू मुझको आसरे दे, मैं दिल की तिजोरी से राज़ रख दूं। चाहे फिर सांस ना ले तेरा दीदार।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक एवरीवन। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। तो अभी आज फैकल्टी आवर में हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कुछ aspects. मेरा नाम है डॉक्टर फैसल तूसी और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जलील मिर्जा एंड वी आर डिस्कसिंग द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो जलील साहब, अभी हम बात कर रहे थे उस वक्त यानी कि आज से को 30 साल पहले के नेटवर्क्स और आपके नेटवर्क्स, जिसमें कितना फ़र्क आ गया है। और हमारे यंगर लिसनर्स को शायद दोनों का फ़र्क भी नहीं पता कि पहले किस किस्म के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते थे। बट लेट्स मूव ऑन टू अदर इंडस्ट्रीज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इस वक्त कोई स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट कर जाए विद अ बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल, तो किस किस्म के इंडस्ट्री में वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है?
2: ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ जो इस वक्त हमारी पाकिस्तानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ एक डिलीमा है ना, वो ये है कि उनको ये पता ही नहीं है कि हमारी जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल है।
1: बिल्कुल,
2: दिस इज अनफॉर्चुनेट कि उनको ये आइडिया ही नहीं है। वो सिर्फ एक कन्वेंशनल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल इंजीनियर हो, उससे अगर पूछा जाए ना कि भाई तुम किस कहाँ जॉब करना पसंद करोगे, तो उसको गिने चुने चंद नाम पता होते हैं कि जी हमने एनटीडीसी में जॉब करनी है, चाहे वो मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऐसी ये डिग्रीज हैं जो एनटीडीसी में यानी तीनों अवेलेबल है, तीनों के लिए जॉब्स अवेलेबल है। या वो कहेंगे जी हम लेस्को, जेस्को, फेस्को या के इलेक्ट्रिक या ये जो वापडा, इस तरह की वो बातें करते हैं कि जी हम इस एरिए में जाएंगे। दूसरा ये है कि उस ऑडियंस को थोड़ा सा वो कोई टेलीकॉम के एरिए में या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के एरिए में अगर उसने डिग्री की है, स्पेशलाइजेशन की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जंप करेगा, तो वो कहेगा जी हम सेलफोन कंपनीज में चले जाएंगे, हम PTCL में चले जाएंगे, एंड दैट्स इट। ये एक छोटी सी दुनिया उन्होंने अपने जहन में बनाई हुई है, लेकिन ये सारी की सारी इंडस्ट्री का 5% भी नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने बात की है, जो स्टूडेंट को जिन चीजों का नॉलेज है, वो 5% इंडस्ट्री को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्चुअल जो स्कोप है वो तो बहुत फसी स्कोप है। और अगर मैं स्टैट्स डिस्कस करूं आपके साथ,
1: जलील साहब जरूर आप वजाहत करें
2: जी, मैं आपके साथ स्टैट अगर डिस्कस करूं, और मैं अभी बिल्कुल ऐसे स्टैट बताऊंगा जो बिल्कुल रफली स्टैट्स हैं, और इट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ SECP, यानी मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूं जो कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। इनमें कोई वो कंपनी शामिल नहीं है जो लोकल गवर्नमेंट में या लोकल अथॉरिटीज में रजिस्टर्ड है, ये नेशन वाइड रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारा अगर डेटा अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 27,000 कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, चल रही हैं, सर्विस दे रही हैं, प्रोडक्शन दे रही हैं, और वो यानी प्रोड्यूस कर रही हैं।
1: ये कंपनीज है और जस्ट पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री?
2: ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री,
1: ठीक है।
2: और इनमें जाहिर है कुछ ऐसी, देखिए मैं जब मैं हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो शायद इंजीनियर्स के लिए कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो इंजीनियर एक ऐसी एंटिटी है जिसको बैंकों में भी, फाइनेंस सेक्टर में भी जरूरत होती है इंजीनियर्स की, और प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं वहाँ इंजीनियर्स जो है ना, अगर ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर लेंगे तो वहाँ भी आपको इंजीनियर्स मिलेंगे। अभी मतलब लाहौर में हमारे पास ऑरेंज ट्रेन चल रही है, तो यहाँ इस ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए 90% इंजीनियर है, 10% जो है वो स्टाफ है जो यानी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कह लें।
1: तो जलील साहब, अगर 27,000 कंपनीज रजिस्टर्ड है इंजीनियरिंग कंपनीज, तो उनके फिर इंजीनियर्स को हायर करने की एनुअल डिमांड कितनी होगी?
2: देखिए जी, मैं बड़ा बहुत रफली और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है। आप थोड़ा सा सोचिए कि एक कंपनी जो कि 15,000-20,000 या 5,000-6,000 लोगों को जॉब दे रही है, और उसके अंदर एनुअली कितने लोग रिटायर होते होंगे, अपनी जॉब से। मैं यानी ये एक मैं रफली बात कर रहा हूँ,
1: एक या दो तो हो ही जाते होंगे,
2: एक दो तो आप 5,000 की कंपनी में एक दो तो नहीं रिटायर होते होंगे, इट्स मोर देन दैट, मच मोर देन दैट होते होंगे। तो मैं एक ऐसे ही आपसे एक बात करता हूँ कि अगर हर कंपनी में एक इंजीनियर एनुअली ऐड किया जाए, यानी रिप्लेसमेंट के तौर पे, नया नहीं, कोई मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा आपके साथ कि वो कंपनी ग्रो कर रही है और उसको नए इंजीनियर्स की ज़रूरत है, मैं करंट इंजीनियरिंग स्टाफ को लेके मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक कंपनी में एक बंदा रिटायर और उसकी पोस्ट को फिल करने के लिए एक नया इंजीनियर रखे, तो हम तकरीबन 27,000 इंजीनियर पर एनम जो है उनको जॉब दे सकते हैं।
1: जलील साहब, आई एम क्वाइट श्योर कि इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं साल के।
2: एग्जैक्टली
1: तो फिर इसका इंडस्ट्री पे क्या असर होता है?
2: अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और वजाहत कर देता हूँ। ये तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल लोकल डिमांड की, और अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाए इंडस्ट्री की डिमांड के, तो हमारी लोकल डिमांड कोई 50,000 to 60,000 पर एनम पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री को इंजीनियर चाहिए होते हैं जो बिल्कुल इंटेक्टेड है और प्रोड्यूस कर रही है और सर्विस दे रही है। ठीक है, मैं नई इंडस्ट्री नए एडअप की बात नहीं कर रहा, वो एसेंशियल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान का कोर बैकबोन है, उसको हर साल जो है अगर एक बंदा भी वो रखे अपना रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो हमें 27,000 इंजीनियर जो है ना वो चाहिए होते हैं। लेकिन इसकी जो एक्चुअल डिमांड है वो 2 to 3 इंजीनियर जो हैं अगर हम लगाएं, तो ये 50,000 to 60,000 इंजीनियर हमें सलाना चाहिए होते हैं लोकल पाकिस्तान में। अब उसके बाद आ जाए ओवरसीज इंजीनियर। हमारी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, इनकी मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, दुबई में एक बहुत ज़्यादा डिमांड है इन इंजीनियर्स की। तो और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में भी इन इंजीनियर्स की, पाकिस्तान इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसकी भी अगर मैं एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हुए आपको एक फिगर बताऊं, तो ये 25,000 to 30,000 बंदा हमें ओवरसीज भेजना होता है हर साल। तो ये डिमांड भी अगर दोनों डिमांडों को ऐड करें तो 90,000 इंजीनियर जो है वो हमें हर साल चाहिए। तो हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, हम 25,000 to 30,000 इंजीनियर सलाना प्रोड्यूस कर रहे हैं।
1: मेरा ख्याल इससे भी कम,
2: शायद इससे भी कम
1: सिग्निफिकेंटली। तो जो हिसाब से कि जितनी हमें हमारी सलाना डिमांड है लोकल, लेट्स स्टिक विद लोकल फॉर नाउ, तो हम उससे उसके हाफ से भी कम अगर प्रोड्यूस करेंगे, इसका असर किस किस्म का होगा हमारे अपने लोकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे?
2: देखिए जी, आपको शायद पता ही है कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी का बूम है इस वक्त, टेक्नोलॉजी तमाम इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है, और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से अफेक्ट कर रही है कि हमें अब जो ओल्ड टेक्नोलॉजी को लेके जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उन सारे इंजीनियर को आहिस्ता आहिस्ता करके रिप्लेस करना है विद न्यू इंजीनियर्स। अब वो न्यू इंजीनियर्स जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेंड होंगे और वो जाके उस इंडस्ट्री में अपना काम जब करेंगे तो फिर हमारी इंडस्ट्री बूम करेगी। अदरवाइज शायद मैं आपको एक और फिगर बता दूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री जो ग्रो नहीं कर रही ना, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उसके अंदर नई इनटेक नहीं हो रही। न्यू इनटेक ना होने की वजह से जो नई चीज़ें सीख के बच्चे आ रहे हैं वो एक तो नंबर भी बहुत कम है, और दूसरा ये है कि वो उनके लिए वो जो अपॉर्चुनिटी है उनको पता भी नहीं है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पड़ी हुई। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हमें ये बता देना चाहिए स्टूडेंट को कि हमारा एरिया कौन सा है। हम सिर्फ टेलीकॉम और पावर सेक्टर को लेके एरिया बना के इंजीनियरिंग यहाँ तक ख़त्म कर देते, ये हमारा एरिया नहीं है
1: जी। इस पे ज़रा वज़ाहत
2: जी करें। जी, इस पे मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि फूड इंडस्ट्री है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, ये एक अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बड़ी बड़ी प्रोफेशनल बेकरीज भी आ जाती हैं और बहुत बहुत बड़े ह्यूज मैन्युफैक्चरर्स जो आ जाते हैं बड़े, उसमें यानी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जिन्होंने इधर फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं और लोकल कंपनीज भी हैं जिन्होंने फैक्ट्री, और ये बड़े अरसे से यहाँ पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं और लोगों को यानी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फूड एंड बिवरेज की मैं बात करता हूँ। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की जो बैकबोन इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप यान को लेके, उसकी प्रोसेसिंग को लेके, आप कपड़े की प्रोडक्शन से लेके आप रेडीमेड गारमेंट्स तक चले जाए, यानी मीन के इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है। और उसमें आए दिन जो लेटेस्ट आपकी लूम्स आ रही हैं और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट आ रहा है, मशीनें आ रही हैं, वो सारी की सारी अब कंप्यूटराइज आ रही हैं। वो पुरानी लूम्स तो नहीं है जो, यानी कोई 19th century की जो लूमें हैं वो तो नहीं है। जब तक आप अपनी लूम्स को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, आप वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मीट करेंगे।
1: तो टाइम फॉर ब्रेक, फिर हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक एवरीवन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. मेरा नाम है डॉक्टर फैसल तूसी. हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जलील असगर मिर्ज़ा, फैकल्टी आवर में वी आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. तो जलील साहब, अ क्विक केस स्टडी ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो आपने रिसेंटली एक फैक्ट्री को विजिट किया, सैफायर, जो कि बहुत बड़ा बहुत पॉपुलर ब्रांड है, टेक्सटाइल ब्रांड है पाकिस्तान का. तो आपने विजिट किया है वहाँ पे, थोड़ा सा बताइए कि हमारे लिस्टनर्स को वहाँ पर जाके क्या देखे. बिकॉज व्हेन वी इमेजिन ब्रांड लाइक सैफायर, तो हम सोचेंगे कि वहाँ पे डिज़ाइनर्स काम कर रहे होंगे और एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्टिस्ट जो कि होंगे भी. लेकिन व्हेन यू विजिट, आपने जब उनका फैक्ट्री विजिट किया तो आपने क्या देखा?
2: देखिए जी, ये अपना फैक्ट्री इसका जो विजिट है, ये इस तरह पॉसिबल हुआ कि मैं एक कंपनी के लिए एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था. तो वहाँ कोई मशीनरी जो थी वो अपग्रेडेशन में जा रही थी, तो मैं उनके वो जो कंपनी अपग्रेड कर रही थी, जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर थे, उनके साथ मुझे विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ. ये सिर्फ ओनली सफ़ायर की बात नहीं है, ये एक दो और भी कंपनियां जिनमें निशात भी कंपनी शामिल है.
1: एग्जैक्टली.
2: तो इधर जब हम जब सोचते हैं कि जिस अभी आपने कहा कि जी वो वहाँ तो सिर्फ
1: डिज़ाइनर
2: का काम है, या यानी मीन के जो आर्टिस्ट लोगों का काम है, तो एक्चुअली ये आर्टिस्ट और डिज़ाइनर जो हैं, ये इनके एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जो कि फैक्ट्रियों में शायद नहीं बैठते, ये एक सेपरेट जगह पे बैठ के ये सब काम कर रहे होते हैं. और इनका काम एक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के ऊपर काम होता है, और ये वहाँ ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. लेकिन एक्चुअली जब जहाँ कपड़ा बन रहा होता है, वो एक अलग ही दुनिया है. वहाँ अगर आप चले जाए तो आपको लगेगा कि आप एक शहर में आके, यानी वो वहाँ आपको लगेगा कि ये एक लदा दुनिया है, ये एक कोई नया सिटी है जिसके अंदर हम गेट में एंटर होंगे तो आपको एक लदा दुनिया मिलेगी. अब जब यहाँ जब मुझे वहाँ उनके जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे इंजीनियरिंग के, उनसे बात करने का मौका मिला, तो वो मैंने उनसे डिस्कस किया. मैंने कहा यार आपके पास, हम तो ज़रा इलेक्ट्रिकल के सोल्यूशन के लिए आए हैं, तो यहाँ बाकी चीज़ें कैसे? तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो हमारे पास हर किस्म के इंजीनियर होते हैं. तो मैंने जब पूछा जी वो थोड़ा एलैबोरेट करें, तो देन दे से कि जी हमारे पास सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, और समटाइम केमिकल इंजीनियर्स भी होते हैं. तो देर आर ए ह्यूज टाइप ऑफ इंजीनियर वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. तो इसके अंदर मेंटेनेंस के काम चल रहे होते हैं, जिनमें ये तीनों टाइप के इंजीनियर, चारों टाइप के इंजीनियर काम कर रहे होते हैं. इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन किसी जगह पे हो रही होती है, किसी जगह पे कोई नई चीज़ बन रही होती है, कोई नया सेक्शन ऐड हो रहा होता है, तो ये तीनों इंजीनियर जो हैं एक इंटेग्रल पार्ट है. तो फिर मैंने पूछा जी आपके पास इंजीनियर कितने होते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं गिन के नहीं बता सकता इतने इंजीनियर.
1: वाओ, ये एक टेक्सटाइल कंपनी की बात, फॉर एग्जांपल,
2: सिर्फ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. तो और फिर उनका ये भी था, उन्होंने ये कहा कि जी हमें तो हर वक्त इंजीनियर्स की ज़रूरत रहती है, यानी मीन के हमारी जो डिमांड है, हमारे तो यहाँ इस तरह का कंपटीशन होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा है, तो यहाँ हमारे अच्छे इंजीनियर्स को तोड़ते हैं एक दूसरे से. तो वो कोई उसको किसी को अच्छी सैलरी ऑफर करके वो यहाँ से इंजीनियर दूसरी कंपनी में चला जाता है, और फिर हमारी एक साल में ही कितनी दफ़ा डिमांड जो है ना रिक्वायरमेंट निकल आती है. तो और ये नहीं है कि ये सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, हमारे पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इन सारे इंजीनियर्स की जो है ना वो इस तरीके से डिमांड रहती. तो अब फैसल जरा थोड़ी देर के लिए गौर करो, इससे ह्यूज सेक्टर. अब पाकिस्तान के अंदर अगर टेक्सटाइल सेक्टर में हम देखें तो ये कोई छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई 11,000 यूनिट लगे हुए हैं. और जब मैं कहता हूँ कि यूनिट लगे हुए हैं, तो ये हर यूनिट एक छोटा सा सिटी है. लोग रह भी अंदर रहे हैं, उनके स्कूल भी अंदर हैं, उनकी मस्जिदें भी अंदर हैं, उनके खाने पीने का बाज़ार भी अंदर बने हुए हैं, सब कुछ उस फैक्ट्री के अंदर है. तो आप अंदाज़ा करो कि ये कितना बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, और कितनी ब्लेसिंग है कि हम इतने बड़े सेक्टर को ले के चल रहे हैं और उनकी इंजीनियरिंग डिमांड को हम उस तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे जिस तरह के हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें मोर इंजीनियर चाहिए, मोर लेटेस्ट इंजीनियर चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं।
1: जलील साहब, आजकल एक परसेप्शन है जो कि आपकी बातों से लगता है कि बिल्कुल ही गलत परसेप्शन है लोगों का कि इस वक्त इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की डिमांड कम है। आपकी बातों से लगता है कि डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि जहाँ पे डिमांड है वहाँ सप्लाई पहुँच नहीं पा रही है।
2: 100% आपने सही बात की। इसकी एक मैंने पहले भी आपको बता दिया कि यहाँ अवेयरनेस की कमी है, ना हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसका स्कोप और उसका डिमांड किस जगह पे है। हमें एक हम ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो एक तो डिफरेंट क्लासेस हैं, एक वो लोग हैं जो अपने स्मॉल बिजनेसेस चला रहे हैं, एक वो लोग हैं जो लार्ज बिजनेसेस चला रहे हैं, एक वो लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं या हम उनको एक मिडिल क्लास, और वो शुरू से गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा उनका वो जो है एक ज़्यादा रुझान रहा है। और लोगों अपने बच्चों को ये भी हमेशा से कहते आते हैं कि यार गवर्नमेंट की जॉब होनी चाहिए और गवर्नमेंट के अंदर जाके नौकरी करनी चाहिए। तो देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े बड़े अदारे नहीं चला सकती, वो प्राइवेटाइजेशन में बिलीव कर रही है। वो अपना जो अपना बोझ है वो कम करने के लिए बहुत सारे इदारों को प्राइवेट कर रही। तो ये थोड़ा सा हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए और बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो 27,000 यूनिट पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड यूनिट काम कर रहे हैं, वो आपके लिए मुंतजर है, वो आपकी डेस्टिनी है। आप यहाँ से पढ़ के 6-6 महीने में देखता हूँ कि NTDC की कोई जॉब नहीं निकली, वापडा की कोई जॉब नहीं निकली, PTCL की कोई जॉब नहीं निकली। तो वो बच्चे बेचारे एप्लीकेशनें दे दे के 6-6 महीने घरों में इंतज़ार करते रहते हैं कि जी हमें इंटरव्यू के लिए कोई बुलाएगा करेगा। और वो लोग जो जाते ही आपको फ़ौरन रखने के लिए तैयार है, उनका बच्चों को पता ही नहीं है, वो एरिया हिडन एरिया है।
1: जलील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही है और आपने तो ये साबित कर दिया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ये कि बस कुछ अवेयरनेस की कमी है और शायद कुछ डिमांड सप्लाई का कुछ सही तरह वो मिल नहीं पा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टुडे एंड माय नेम इज़ डॉक्टर फैसल तूसी साइनिंग ऑफ फ्रॉम FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.
1: www.ucp.edu.ph FM 92.6 live station of the nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, सोचूं तो एक शख्स ना अपना दिखाई दे।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया।

www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शफीकुर रहमान। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में फार्मेसी और फार्मासिस्ट से रिलेटेड गुफ्तगू करते हैं और उनके चैलेंजेस को सामने रखते हैं और उनके ऊपर हम डिस्कशन लेते हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ माहरीन, फार्मेसी से रिलेटेड माहरीन हमारे पास आते हैं और अपनी गुफ्तगू से हमें मुस्तफीद करते हैं। उसी सिलसिले में हमारे पास प्रीवियसली भी डॉक्टर मोहम्मद जमान मौजूद थे और आज भी हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जमान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है और ये लास्ट 6 और 7 ईयर से ये यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू शो डॉक्टर साहब।
3: डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इस शो में बुलाने का, और जैसे प्रीवियस भी हमने डिस्कशन की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था आपके साथ ये डिस्कस करके और लोगों को फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में अवेयरनेस देके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आज भी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हो सके लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि फार्मेसी प्रोफेशन क्या है और उसमें जो फार्मासिस्ट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस कम्यूनिटी को सर्व करने में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।
2: जी डॉक्टर साहब, हमारी लास्ट जो डिस्कशन हो रही थी उसमें हम बात कर रहे थे कि फार्मासिस्ट का रोल कम्युनिटी फार्मेसी में क्या रोल है और उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और आपने बड़े अच्छे अंदाज से इसको हमें बताया था, हमारे सामीन को बताया था। और उसके बाद हमने हॉस्पिटल फार्मेसी के हवाले से भी चैलेंजेस को हमने डिस्कस किया था। और आज मैं चाहूँगा कि हमारे फार्मासिस्ट का इंडस्ट्री में क्या रोल है और इस फार्मेसी प्रोफेशन की इंडस्ट्री में क्या खिदमात हैं और फार्मासिस्ट किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर, ड्रग डेवलपमेंट में, ड्रग प्रोडक्शन के अंदर, इंडस्ट्री में आप इसका थोड़ा सा रोल मुझे बताएं ताकि हमारे सामीन को पता लगे कि फार्मासिस्ट ना सिर्फ हॉस्पिटल में मौजूद होता है, ना सिर्फ कम्युनिटी में मौजूद होता है, बल्कि इंडस्ट्री में ड्रग की, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका एक कलीदी किरदार है।
3: जी डॉक्टर साहब, जैसे प्रीवियस सेशन में भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इस कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट है फार्मासिस्ट, इसी तरह हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, अगर मैं ये कहूँ कि फार्मासिस्ट के बगैर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कुछ नहीं, तो इसमें कोई जो है झूठ नहीं होगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चलाने में फार्मासिस्ट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का लेआउट डिज़ाइन सजेस्ट करने से लेकर उसके अंदर जितनी वर्किंग है, उस सारी वर्किंग में फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितनी भी हमारे पास मेडिसिन डेवलप होती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, उनकी मुख्तलिफ जो डोजेज फॉर्म बनाई जाती हैं, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल हैं, सीरप हैं, सस्पेंशन हैं, ये सब बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है, यानी वो मटेरियल जिससे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, वो भी फार्मासिस्ट की अप्रूवल के बगैर नहीं आ सकती, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता है कि कौन सा मटेरियल किस क्वालिटी का है और वो किस तरह की प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जा सकता है। ये कहना हम झूठ नहीं हो सकता कि फार्मासिस्ट अगर इंडस्ट्री से निकाल दिया जाए या फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में ना हो तो हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो सकती। तो इसलिए जैसे मैंने गुजारिश की कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक हर स्टेज पे फार्मासिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। रॉ मटेरियल सेक्शन में जब रॉ मटेरियल आता है तो वहाँ फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही उसको पास किया जाता है, या अगर वो उस क्वालिटी का जो कि रिक्वायर्ड है ना हो तो फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही उसको रिजेक्ट किया जाता है। जब रॉ मटेरियल से जो हमारा केमिकल है, जो हमारा मटेरियल है, नेक्स्ट सेक्शन में मूव करता है, तो वहाँ पे भी रिसीव करने वाले फार्मासिस्ट ही होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हम टैबलेट सेक्शन की बात कर लें, तो रॉ मटेरियल सेक्शन से जब टैबलेट सेक्शन में आएगा, तो वहाँ पे टैबलेट सेक्शन में मौजूद जो फार्मासिस्ट है उसको अपनी निगरानी में वो रिसीव करेगा और उसको फिर अकॉर्डिंगली प्रोसेस करवाएगा। अब जब टैबलेट सेक्शन में वो मटेरियल पहुंच जाएगा, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको किस तरह से प्रोसेस करना है कि हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी की टैबलेट बन सकें, वो सारा फार्मासिस्ट की सुपरविजन में होता है। अब जो टैबलेटिंग का प्रोसेस है, इसमें एक इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टर्म यूज़ की जाती है, जिसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मेंटेन किया जाता है कि अल्टीमेटली हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट बन सके। तो ये जो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल है, ये भी सब फार्मासिस्ट की ज़ेरे निगरानी ही होता है। फिर उसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती हैं, तो ये चली जाती है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट में। अब क्वालिटी एश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट है, उसमें भी फार्मासिस्ट ही होते हैं जो प्रोडक्शन फार्मासिस्ट के साथ इन क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोसेस है उसको भी देख रहे होते हैं। और फिर जब ये प्रोडक्ट बनने के बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चली जाती है, यहाँ पे जहाँ उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, क्वालिटी के चेक के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और उन स्टैंडर्ड को मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी ऑफिशियल बुक्स जो हैं, जो फार्माकोपिया हैं, उनके अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो फार्मासिस्ट होगा, वो अपने ज़ेरे निगरानी इन प्रोडक्ट को अवेल्युएट करवाएगा कि ये जो बनी है टैबलेट हमारे पास है, ये जो प्रोडक्ट डेवलप होके आई है, क्या उन क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करती है या नहीं। और जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, जो अगेन अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट ही होगा, वो इस चीज़ को अश्योर करता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, क्या वो मेंटेन हो रही है या नहीं। उसके बाद जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है और इसको मार्केट में भेजा जाता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास पूरी एक टीम होती है, जिसमें मोस्टली आजकल तो आप यकीनन देख रहे होंगे कि जो लीडिंग पोजीशन पे वो फार्मासिस्ट ही हैं, जो इन प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जहाँ जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाई जाती है, डॉक्टर्स तक पहुँचाई जाती हैं, डिफरेंट जो फार्मेसीज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। अगेन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और फार्मेसीज हैं, ये भी अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट ही होते हैं, और वहाँ से ये डिस्पेंस की जाती हैं आगे जो पेशेंट हैं उनको ये पहुँचाई जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल से लेकर जो एंड यूज़र है हमारा, जो पेशेंट है, वहाँ तक ये सारा जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही चलता है। तो हम किसी तरह से भी फार्मासिस्ट को या उसके रोल को इस सारे प्रोसेस से, जो हेल्थ केयर का एक सिस्टम है, उसमें से हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि फार्मासिस्ट निकल जाएगा। जिस स्टेप पे भी आप फार्मासिस्ट को इसमें से माइनस करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़ होगी। तो इंडस्ट्री के अंदर आप कह सकते हैं कि कलीदी रोल है एक फार्मासिस्ट का क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने में।
2: बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के एक प्रोसेस को जो इंडस्ट्री में होता है उसको आपने बयान किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर सेक्शन में फार्मासिस्ट की मौजूदगी, तो फार्मासिस्ट एक इंडस्ट्री के अंदर कितने फार्मासिस्ट एटलीस्ट जो उनसे है ना रिक्वायर्ड होते हैं, अगर एक प्रोसेस जो उनसे हैं एक टैबलेटिंग का ही अगर हम प्रोसेस की बात करें या हम किसी दूसरी डोजेज फॉर्म की बात करें, तो एक इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम कितने फार्मासिस्ट होंगे, ये हम सिर्फ अपने जो आने वाले फार्मासिस्ट हैं उनकी जानकारी के लिए या फिर हमारे जो लोग इस प्रोफेशन से थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं उनकी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि स्कोप जो सा है फार्मासिस्ट का आने वाले वक्त में या इस वक्त में कितना इम्पॉर्टेंट है फार्मासिस्ट का, और कितना इसका सोशियो इकोनॉमिक पोजीशंस आपको पता है पाकिस्तान की कैसी हैं। तो हर कोई अगर कोई डिग्री कर रहा है तो कोई जॉब के लिए कर रहा है या फिर अच्छे अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है, तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं या किसी और फील्ड के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मासिस्ट के लिए।
3: देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं और इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो यस, इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर करीब 1000 प्रोडक्शन यूनिट हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। अगर हम नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट की बात करें, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सेटअप है। जैसे अभी पिछले आपके सवाल के जवाब में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडस्ट्री का कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जहां पे फार्मासिस्ट की ज़रूरत ना हो। चाहे आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर लें, चाहे आप रेगुलेटरी जो डिपार्टमेंट है या जो रेगुलेटरी अफेयर का डिपार्टमेंट है वहाँ की बात कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में आपको मल्टीपल नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो है वो चाहिए। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का बेहतरीन स्कोप है। देखिए जी, स्कोप जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्वालिटी वर्क जो है या क्वालिटी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आज भी बेशक हमारी जो एकेडमिया है वहाँ से लार्ज नंबर ऑफ फार्मासिस्ट पर ईयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी फार्मासिस्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट हर जगह पे हर वक्त में मौजूद रहती है। तो अगर हम क्वालिटी फार्मासिस्ट प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएं, और जो कोशिश भी की जा रही है, तो इंडस्ट्री के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा नीड है, उनकी बहुत ज़्यादा खपत है, तो हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जॉब के हवाले से एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे इन फार्मासिस्ट को जो है हम ओबलाइज कर सकते हैं, जहाँ इन फार्मासिस्ट की जो सर्विसेज हैं वो हम ले सकते हैं।
2: ओके डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट के रोल की और फार्मासिस्ट के प्रोफेशन की, फार्मेसी प्रोफेशन की बात करते हैं, इसी के ऊपर हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू रखें। अब छोटे से ब्रेक के बाद अभी हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, और उसके बाद हम आपके साथ वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, और प्रोग्राम हमारा चल रहा है फार्मेसी और उसका स्कोप और फार्मासिस्ट का स्कोप। तो मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शफीकुर रहमान और हमारे साथ हैं प्रेस्टीजियस गेस्ट हमारे डॉक्टर मोहम्मद जमान। हम उनके साथ एक सैर अर्थ हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं फार्मेसी और फार्मेसी के प्रोफेशन के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी डेवलपमेंट के बारे में, ड्रग डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई ब्रेक से पहले, फार्मासिस्ट का इंडस्ट्री के अंदर रोल आपने बड़ी अच्छी उसके ऊपर गुफ्तगू दी। मुझे काइंडली ये बता दें कि फार्मासिस्ट को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जिसमें हम न्यू ड्रग डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, या जो अब करंट हमारी जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके अंदर हमें कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़ रहे हैं जो नाकाबले बयान हैं, या अगर आप बयान कर सकते हैं तो काइंडली उसके ऊपर हमें बताएं कि हम नई ड्रग डेवलपमेंट में, न्यू ड्रग डेवलपमेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका जो आंसर है वो आपका सेटिस्फैक्ट्री हो। देखें, न्यू ड्रग डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सारी दुनिया के लिए चैलेंज है, कि एक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारे पास है कॉस्ट का या फंडिंग का। देखिए, हमारे जैसे कंट्रीज जो कि जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं वो इतना हाई कॉस्ट बियर नहीं कर सकते। एक नई ड्रग को डेवलप करने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर रिक्वायर्ड होते हैं जो कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि एक ड्रग को डेवलप करने के लिए फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक ड्रग को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। इट टेक्स अराउंड 10 to 15 years, यानी एक सबर आजमा काम है कि आपने 10 से 15 साल इसके ऊपर सर्व करने हैं, फिर उसके बाद कहीं आपके पास कोई एक प्रोडक्ट डेवलप हो सकती है। और अगेन उसमें जो एक बड़ा इशू ये आता है कि जो सक्सेस के चांसेस हैं हार्डली 10% हैं। यानी अगर आप बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके 10 से 15 साल का टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास जो चैलेंजेस आते हैं वो उसके सक्सेस के हैं। हार्डली 10 to 15% जो है वो आपके पास सक्सेस के चांसेस होते हैं कि जो आप नई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो आपके विश एंड विल के अकॉर्डिंगली हो, या जो आप डिजायर्ड आउटकम लेना चाह रहे हैं वो प्रोड्यूस कर सके।
1: अमेजिंग डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन है कि ड्रग डेवलपमेंट में आपके पास 10 to 15% चांसेस होते हैं। ओके,
2: हाँ जी। इसी तरह सर, फिर हमारे पास जो ड्रैप, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसे अप्रूवल भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि अगर आपने प्रोडक्ट डेवलप की है या प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसका अप्रूवल आपने लेना है, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ वही प्रोडक्ट डेवलप होती हैं, वही प्रोडक्ट मार्केट हो सकती हैं जो जिनका ऑलरेडी FDA से अप्रूवल हो। जो ड्रग किसी तरह से भी किसी भी फॉर्म में FDA से अप्रूव नहीं है वो पाकिस्तान में उनका अप्रूवल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उन ड्रग्स को अप्रूव नहीं करती जो ऑलरेडी FDA या यूरोपियन जो एसोसिएशंस हैं उनसे अप्रूव ना हो।
1: इसका मतलब ये हुआ कि हम पाकिस्तान में नई ड्रग डेवलप नहीं कर सकते, या हमें पहले FDA से अप्रूव करानी पड़ेगी फिर ड्रैप हमें उसको बनाने का जो सा लाइसेंस देगी।
2: डॉक्टर साहब, ये जो पॉइंट है ना, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे लिए डेफिनेटली ये चैलेंज है कि जब तक कोई भी प्रोडक्ट FDA से अप्रूव नहीं होगी उसको यहाँ पे अप्रूव करवाना या लॉन्च करना एक चैलेंज है, हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए एक बेनिफिट भी है क्योंकि FDA से जो ड्रग अप्रूव होके आती हैं और फिर उनको हम पाकिस्तान के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक जो सेफ्टी का मार्जिन है ना वो हमें मिल जाता है कि अगर FDA से ड्रग अप्रूव है इट मींस वो ड्रग जो है वो सेफर होगी फॉर यूज। अदरवाइज बाज़ औकात आपने देखा कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, तो जो सेफ्टी का इशू है अगर ये इस तरह से कंट्रोल ना हो तो अनसेफ जो प्रोडक्ट्स हैं या वो प्रोडक्ट जो शायद हमारे लिए उस लेवल की सेफ्टी पेशेंट को प्रोवाइड ना कर सकें वो भी अप्रूव हो जाएं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हम ड्रग डेवलपमेंट की तरफ तो जा रहे हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्री ने, हमारी ने कभी ये कोशिश की है कि रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या पाकिस्तान में रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है?
2: डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट जो है सिटी फार्मा, जो मेरे नॉलेज में है वो सिटी फार्मा, जहाँ पे हम पैरास्टामोल को सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा कोई नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, जो वो रॉ मटेरियल जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, वो सिंथेसाइज कर रहे हूँ।
1: इसका मतलब है कि कुछ चैलेंजेस होंगे ऐसे जिसकी वजह से हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे हैं, क्या आप उन चैलेंजेस की निशानदेही कर सकते हैं?
2: देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का है और जो फैसिलिटीज़ हैं उनका है। हमारे पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस सिंथेसिस को या प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से आपने ये चीज़ देखी होगी कि हम मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, या जो मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल जो इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में आ रही, उन प्रोडक्ट को यहाँ पे ले के आना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस कॉस्ट को बियर कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो जो एंड यूज़र है, दैट इज़ पेशेंट, उस तक पहुँचाई जा सके।
1: शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बन रही है और एंड यूज़र पे, पेशेंट्स के पास कॉस्टली मेडिकेशन जा रही है, क्या यही वजह है?
2: जी डॉक्टर साहब, डेफिनेटली जब आपके पास रॉ मटेरियल जिससे आपने प्रोडक्ट डेवलप करनी है, जब आप वो इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो आप सही फरमा रहे हैं, ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो मेडिसिन की प्राइस है वो ज़्यादा है।
1: अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद जमान, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, सुनते रहिए FM 92.6 UGP की।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. अभी तक हमारे पास जो हमने गुफ्तगू की डॉक्टर मोहम्मद जुबान, जो हमारे पास एक गेस्ट आए हुए हैं और बड़े प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं हमारे साथ, हमने इनके साथ गुफ्तगू की इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के चैलेंजेस के हवाले से कि इंडस्ट्रीज़ में हमें फार्मासिस्ट को और फार्मेसी प्रोफेशन को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है. और उसके बाद हमने ड्रग डेवलपमेंट के हवाले से भी इनके साथ एक सैर हासिल गुफ्तगू की और उन्होंने इसके बड़े सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी दिए. और अब हम डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है कि हमारे पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं. अभी आप फरमा रहे थे कि FDA से अप्रूव्ड या ड्रैप से या FDA से या दूसरी जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे अप्रूव्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं कितनी हैं पाकिस्तान में, जो जिनके लाइसेंस की बेस के ऊपर इंडस्ट्री में मैनुफैक्चरिंग हो रही है.
4: जी डॉक्टर साहब, ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर कमोबेश 1000 के करीब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं फार्मास्यूटिकल्स के, बट बदकिस्मती से कोई एक भी FDA अप्रूव्ड यूनिट नहीं है. पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी यूनिट FDA अप्रूव नहीं है.
3: डॉक्टर साहब, आर यू श्योर कि वाकई कोई FDA अप्रूव्ड इदारा नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में?
4: जी डॉक्टर साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक तो अब तक यही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी FDA अप्रूव फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है. हाँ, कुछ कंपनीज कोशिश ज़रूर कर रही हैं, कुछ कंपनीज ने जो है डिफरेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की सर्टिफिकेशन ली हुई है. कुछ कंपनीज ने, जैसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है और इसी तरह मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है, उससे कुछ कंपनीज ने सर्टिफिकेशन ली हुई है. लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक कोई भी पाकिस्तान के अंदर FDA अप्रूव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है.
3: मतलब ये कि कोई ना कोई सर्टिफिकेशन ऐसी है जिसकी बेस के ऊपर हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रही है.
4: हाँ जी,
3: क्वालिटी प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है.
4: ISO सर्टिफिकेशन, मेजोरिटी ऑफ द जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो ISO सर्टिफिकेशन करवा रही हैं. रेगुलर बेसिस पे जो है ना वो ISO सर्टिफिकेशन होती है. और जैसे मैंने अभी कुछ एजेंसीज के नाम भी लिए हैं जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनसे भी हमारी कुछ फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जो सर्टिफिकेशन ले रही हैं और कुछ के पास सर्टिफिकेशन है भी. सही
3: डॉक्टर साहब, ये तो ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू है जो हम कर रहे हैं और आप हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हमारी हो रही है हमारे सामेईन के लिए. तो मेरे ख्याल में इसको आप, क्योंकि UCP से आपका ताल्लुक़ है, आप यहाँ पर पढ़ाते भी हैं और आपका सब्जेक्ट भी यही है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस आप पढ़ाते हैं और आपने बहुत सारे MPhil और PhD प्रोड्यूस भी किए हैं यहाँ पर और आप अंडर ग्रेड के क्लासेस को भी यहाँ पर पढ़ाते हैं. तो मुझे ये बताइएगा कि फार्मेसी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की एफिलिएशन या फिर MOUs किसी इंडस्ट्रीज़ के साथ, यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ वो साइन हुए हुए हैं और हमारे तालिब इल्म जिनसे हैं वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं या ले रहे हैं, क्या उसका कोई शेड्यूल भी है और किस हवाले, इस हवाले से आप हमें कुछ बताएंगे?
4: जी डॉक्टर साहब, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारी जो फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, वो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हर साल जो है वो विज़िट करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट सेक्शन को जाके विज़िट करते हैं और वहाँ पे जो प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको अपनी आंखों के सामने होता देखते हैं. हमारी फैकल्टी के अंदर एक इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड भी है जिसके मेंबर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पैसिफिक फार्मा है, इसी तरह शाजो ज़का फार्मास्यूटिकल है, इसी तरह मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल है और कुछ और भी ऐसी फार्मास्यूटिकल्स हैं जिनके साथ हमारे MOUs भी हुए हैं और जिनके साथ जो है हम कोलैबोरेट भी कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से. जी, इसी तरह जो है हमारे स्टूडेंट जो है वो CCL फार्मास्यूटिकल्स, जो लाहौर की एक बड़ी नॉन फार्मास्यूटिकल्स है, वहाँ पे भी जाते हैं, विजिट करते हैं, उनके साथ भी हमारा बड़ा अच्छा कोलैबोरेटिव वर्क चल रहा है और उनके साथ हम कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं. तो फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो है वो इन इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके ही चल रही है, जिससे दोनों तरफ म्यूचुअल बेनिफिट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी और हमें भी।
3: अच्छा, हमारे स्टूडेंट यहाँ पर इंटर्नशिप्स भी ले सकते हैं इन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हमारे MOU साइन हुए हुए हैं?
4: जी डॉक्टर साहब, जिन इंडस्ट्रीज के साथ हमारे MOU साइन हुए हैं, शायद मैं उनमें से कुछ का नाम नहीं भी ले पाया, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जिसमें हाइनून के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है हमारे वो इंटर्नशिप के लिए जा रहे होते हैं। इवन जो समर का टाइम होता है हमारे पास, समर जो सेमेस्टर है, उसमें हमारे फैकल्टी इंडस्ट्री प्लेसमेंट भी होती है कि हर साल हमारी फैकल्टी के कुछ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके हैंड ऑन प्रैक्टिस लेते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं।
3: अच्छा, हमारे जो टीचर्स हैं इन इंडस्ट्री के अंदर, क्या वो उनसे रिसर्च डेवलपमेंट का भी फ़ायदा ले रहे हैं इंडस्ट्रीज उनसे, या हम तो उनसे फ़ायदा ले रहे हैं, चले हम उनसे इंटर्नशिप अपने स्टूडेंट्स की करवा रहे हैं, हम अपने उनको विजिट्स करवा रहे हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस उनको सिखा रहे हैं, तो क्या वो भी हमसे कोई फ़ायदा ले रहे हैं?
4: देखिए डॉक्टर साहब, जब भी कोई MOU साइन होता है तो इसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। जैसे डॉन वैली फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके साथ भी हमारा MOU साइन हुआ है, उनके साथ हमने जो है वो प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारे स्टूडेंट वहाँ इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। मैंने खुद कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है एज अ रिसर्च कंसल्टेंट और R&D कंसल्टेंट के तौर पर काम किया हुआ है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री से बेनिफिट ले रहे हैं तो इन रिटर्न उनको भी हमसे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है उनमें उनको फैसिलिटेट करें। तो ये डेफिनेटली म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं वो इससे बेनिफिट ले रही हैं।
3: मतलब ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है ये इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी लिंकेजेस में बड़ा अच्छा किरदार अदा हो रहा है, और आपकी तरफ से ही ऑब्वियसली हो रहा है, फार्मेसी डिपार्टमेंट्स की तरफ से ही हो रहा है ऑब्वियसली, तो इसका तो सेहरा आप लोगों को जाता है डेफिनेटली, और इसका सेहरा ऑब्वियसली डीन साहब को भी जाता है, और हमारे आप जो रिसर्चर्स हैं यहाँ पर उनको भी इसका सेहरा जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो गुफ्तगू कभी ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू है, इंशाल्लाह ताला आपसे मज़ीद भी टाइम लेंगे। हमारे पास आज का प्रोग्राम का टाइम इस वक्त ख़त्म होता है, हम आपको दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। इस प्रोग्राम में हम फार्मेसी और फार्मासिस्ट के प्रोफेशन के हवाले से बात करते हैं, उसको चैलेंजेस जो पाकिस्तान में फेस करने पड़ रहे हैं उसके हवाले से बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.2 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं वो एक अहद है, एक दौर है पूरा।
1: 20वीं सदी के आखिरी हिस्से को अपनी आवाज के सहर में जकड़ने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज का जादू किसी की रूह पर असरअंदाज होने के लिए किसी मखसूस जुबान का मोहताज नहीं। साज और आवाज से नुसरत की रूह और दिल की हम आहंगी के बायस सुनने वाले उनकी आवाज के सहर में खो जाया करते थे।

0: तो ये अल्लाह की अता होती है और गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है और लोग उसे प्यार कर रहे हैं।
1: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान कवाली के मैदान में कदम रखते ही जान चुके थे कि कवाली को जिंदा रखना है तो कुछ मुनफरिद करना होगा। उन्होंने सरगम और लयकारी का इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल करके कवाली को एक ऐसी शक्ल दे दी कि सुनने वाला उसके सहर में जकड़ा चला जाता। कवाली जुग्राफियाई, लसानी और मजहबी हदूद की कैद से आज़ाद हो गई।
2: मुझे बचपन से यही शौक था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा नया अंदाज सीखूं जिससे मेरी एक अलग पहचान

जब भारत के बड़े बड़े मौसीकारों ने खान साहब को कॉपी करना शुरू किया तो बिलाआखिर वो खुद मैदान में उतर आए। माइकल ब्रूक के साथ कामयाब तजर्बात के बाद रेमिक्स म्यूजिक स्टार बाली सागू के साथ भी फ्यूजन किया, जिसने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.music.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

கலந்தரம் மஸ்தம் கதறியும் கலந்தரம் மஸ்தம் பண்டாயமுறு